0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पड़ती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: सिर्फ प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: हम खा डर रही है, मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, कब आ रहा है? गुस्सा आ जाएगा, आ रहा है, देखिए।
0: ये गुस्सा नहीं है।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: देखो देखो वो आ गया।
1: नाम है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: रंबाहो फ्रॉम धुरंधर। कर क्या रहे रणवीर सिंह यार धुरंधर के बाद कर एज इफ ही नीड्स टू डू समथिंग आफ्टर द स्मैश इट सक्सेस ऑफ धुरंधर।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: या मेक्स यू वंडर, राइट क्वेश्चन फॉर यू। अगर आपने कुछ इतने सौ करोड़ रुपए बना लिए होते थ्रू वन फिल्म लाइक धुरंधर, आई थिंक पार्ट वन पार्ट टू को मिलाकर कुछ हीज मेड सम 200-250-300 crore समथिंग लाइक दैट, बिकॉज ही मेड सम वेरी स्मार्ट बिजनेस डिसीजंस राइट एट द बिगनिंग ऑफ द ऑफ साइनिंग द फिल्म राइट। सो इतने पैसे अगर आपने कमा लिए होते एक प्रोजेक्ट से, वुड यू एक्चुअली डू अनदर वन, और वुड यू आराम से रिटायरमेंट, मजा नहीं लाइफ, जूस पीवानू, मजा करानू? बट या वॉट इज रणवीर सिंह अप टू? ही इज ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, इट्स कॉल्ड प्रलय and ambitious post-apocalyptic zombie thriller. I don't know, it's a zombie thriller. Jay Mehta ne isko direct kiya hai, Hansal Mehta ke bete hain. 300 crore ka project hai. It's set in a devastated zombie ravaged Mumbai. Mumbai mein in the future agar zombie attack ho gaya to kya hoga,

and filming is going to begin in Australia. Now here's what I यार मुंबई के बारे में फिल्म है और ये ऑस्ट्रेलिया में जाके शूट करने वाले हैं सितंबर 2026 दिस ईयर. एंड कल्याणी प्रियदर्शन का ये बॉलीवुड डेब्यू मार्क होने वाला है. सो दीज आर द डिटेल्स दैट वी हैव सो फार फॉर रणवीर सिंह नेक्स्ट. कुछ देर में कमिंग अप कॉकटेल 2 से दैट स्मैश इट सॉन्ग कॉल्ड माशूका. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड. गुड मॉर्निंग.

0: मिलाने पिलाने और जमीन बाहर पसारे बोल रही थी कि हाउस मार्क कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लगा था जैसे प्रिया के प्यार का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली।
1: बिग 106.2

लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: कुछ गानों में कुछ एक अलग ही एनर्जी होती है. इस वन ऑफ दोस सॉन्ग मोहित चौहान इलाही. इस गाने को अगर आपने सुबह सुन लिया ऑन योर वे टू वर्क, यू कैन नॉट enter the workplace in a foul mood. That's what I believe. This is a Big 106.2, the beat of Bollywood, and it's now time to play the Bollywood VK contest.
0: Participate in the Bollywood VK contest and win a family staycation. Big summer surprises. Presenting sponsor Skechers. Title sponsor Papa John's. Hospitality partner Rixos Almirid Ras Al Khaimah.
1: So here's the deal. Every day we take two callers on the phone line in conference playing against each other. And Bollywood plus vacation, that's what the contest is all about. Bollywood VK contest mein kya hota hai ki main aapko ek gana sunata hu, a song that's been shot in a beautiful location. It's like the perfect combination of Bollywood plus vacation. And then us gane se jude teen sawal main aapse poochta hu, best of three. If you're able to answer two out of three or do better than the person playing against you in conference, then your name goes into the draw to win something that's on everybody's top of the wish list. Come समर्स हियर इन द यूएई, आप एक स्टेकेशन जीत सकते हैं. और ऐसा वैसा नहीं, रिक्सॉस अलमायरिड रसल खेमा एक स्टेकेशन आप जीत सकते हैं, प्लस ऑन द स्पॉट टू वॉक्स टिकट्स एंड एन एफएनबी वाउचर. इतना सब कुछ पे धावा मारने के लिए क्या करना है आपको, हमारे पहले व्हाट्सएप नंबर पे धावा मारो. 0543091062, दैट्स आवर नंबर. व्हाट इफ यू गो टू टाइप आउट BSS फॉर बिग समर सरप्राइजेस, BSS स्पेस अपना नाम, इस मैसेज को व्हाट्सएप करो 0543091062. नंबर एक बार फिर 0543091062. पर जग से लाज फ्रॉम कॉकटेल टू कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड. गुड मॉर्निंग.
0: बिग 106.2.

0: राइट ऑन बिग 106.2। एंड कल मैंने एक पोल सवाल रहा था, रोज एक्चुअली मैं कुछ आपसे पूछता हूँ ऑन आवर इंस्टा पेज। इफ यू डोंट फॉलो अस, आवर हैंडल इज 106.2 बिग FM। अगर आप फॉलो करते हैं तो भाई बल्ले बल्ले, बहुत मजा करते हैं हम लोग रोज। कल मैंने सवाल पूछा था, शुड वैभव सूर्यवंशी प्ले इन द फर्स्ट T20 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: राइट, एंड 78% ऑफ यू सेड यस प्लीज। कैन वी नाउ आफ्टर दोस टू मैचेस इन विच उन्होंने पानी पिलाने का काम किया अगेंस्ट आयरलैंड एंड वी एंडेड अप लूजिंग, कैन वी प्लीज सी अ बिट ऑफ वैभव सूर्यवंशी? कैन वी प्लीज? इट्स द फर्स्ट T20 अगेंस्ट इंग्लैंड, डरम में ये खेला जाने वाला था। कल था, क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज या 78% ऑफ यू टर्न आउट टू बी राइट, बिकॉज कल अगर मौका दे दिया होता इट वुड हैव बीन जस्ट बैटिंग फॉर हिम, सीइंग द कंडीशंस एंड यू नो नाइस लिटिल आउटिंग फॉर हिम, बिकॉज एनीवेज मैच तो धुल गया, वॉश आउट हो गया। बट या सम पॉजिटिव्स कमिंग आउट फॉर इंडिया, 189 फॉर 7 दे स्कोर्ड इन देयर 20 ओवर्स। अभिषेक शर्मा 59 एंड श्रेयस अय्यर द कैप्टन स्कोर्ड 68 और 47, 6 4s and 1 6। एंड शिवम दुबे इज इन वेरी गुड फॉर्म एज वेल, ही स्कोर्ड स्ट्राइक रेट ऑफ 200 से 42 विद द हेल्प ऑफ 2 4s and 3 6s। एंड इंग्लैंड डिड नॉट कम आउट टू बैट एट ऑल, दैट्स हाउ हार्ड इट वॉज रेनिंग इन डरम यस्टरडे। बट या आई मीन आर अश्विन सेड समथिंग वेरी वेरी क्रूशल, ही सेड कि ये हर कोई सूर्यवंशी को मौका दो, सूर्यवंशी को मौका दो ये लोग कह रहे हैं, लेकिन इमेजिन कि मौका मिल गया और वो बंदा 15 साल का चीपली आउट हो गया, ही गॉट गेट्स आउट इन सिंगल फिगर्स, देन यू नो इज ही रेडी फॉर ऑल द ब्रिक पैड्स एक्सेट्रा, और वुड यू रादर दैट ही काइंड ऑफ यू नो eases himself into the team? But I'll tell you one thing, one guy who's making it a bit easier for Mr. Vaibhav Suryavanshi is Sanju Samson. What's common between his three innings is that score that he, the fact that he scored just one run. Matlab wo bahut hi cheaply out ho rahe hain. Something will have to be done, Sanju Samson. And something will have to be done very soon. Speaking of very soon, Salaam Ishq, Adnan Sami, Dil Kya Kare coming up in just a while. This is The Big Breakfast with me, Sid. Good morning.
1: Big 106.2, The Beat of Bollywood.
2: मैदान सिंह के खजाने का एड्रेस जरा जोर से बोले बे।
3: Get ready for a treasure hunt like no other. Indra Kumar, Bhushan Kumar and Ashok Takeria invite you to the biggest family entertainer of the year, Dhamaal 4. Starring Ajay Devgan, Ritesh Deshmukh, Arshad Warsi and Javed Jafri. Directed by Indra Kumar. Releasing on 10th July. Distributed by Al Nisar Cinema Film. Powered by Big 106.2.
1: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
4: Craving pizza? Here's something even better. Order for just 50 dirhams on the Papa John's UAE app and enter the Papa Cash and Rewards raffle. You could win 50,000 dirhams cash every month, plus monthly iPhones. And that's not all. Everyone wins with free pizzas and sides guaranteed. Dine in, take away, or get it delivered. Just order through the UAE Papa John's app. Download, order for 50 dirhams. Enter the raffle. Everybody wins. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: A car for rent at just 899 dirhams per month. Nothing even comes close. No ownership, no commitment. Just drive. Book now on selfdrive.ae. Your car, your way.
1: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
0: Morning 8:25 on the clock. Let's take a look. सबसे पहले at 611 Emirates Road heading south going towards Alavir. आपको मिलेगी 5 से 6 मिनट की देर. Be careful out there. Then there's S112 heading east and west industrial area 6 के आसपास. Especially you'll find 5-6 मिनट की देर. E11 311 heading south going towards Dubai from Sharjah. Usual traffic 7 से 9 मिनट का. आज Al Khan is particularly busy because Corney Street where there's been an incident being reported. So yeah, be careful if ho sake to is raste ko avoid karein aaj ke din. Then there's Waterfront Market D92 pe going towards Goldsook area and Dera. Also you'll find a bit of congestion. Then there's E11 par Sheikh Zayed Road Trade Center roundabout is a bit congested. Al Jadaf ki taraf jata hua traffic 66 Dubai Alain Road par, and then 44 going towards Business Bay, the usual 2-3 minutes ki der. And Maidan Street is a bit busy all thanks to an incident being reported right outside Bowling Center.
3: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
2: आज सुबह का आखिरी लास्ट एंड फाइनल बोर्डिंग कॉल फॉर दिस मॉर्निंग, इन केस यू वांट टू गेट योर नेम्स रजिस्टर्ड टू प्ले द बॉलीवुड वेके कॉन्टेस्ट, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी टाइम फॉर द बिग समर सरप्राइजेस का बॉलीवुड वेके कॉन्टेस्ट कमिंग अप इन जस्ट अबाउट 13 टू 14 मिनट्स फ्रॉम नाउ। सो 10-12 मिनट है आपके पास टू कीप व्हाट्सएपिंग 0543091062। व्हाट डू यू हैव टू मैसेज BSS for Big Summer Surprises, BSS space sticker apna naam, and keep WhatsApping to 0543091062. Who knows, you might be the next to get your name into the draw to win that unmissable staycation at the Rixos Almirid in Russell Khema, all thanks to Big Summer Surprises. Here's Arijit Singh with Dilli Wali Girlfriend on Big 106.2, a part of the Funnation Network.

0: सुबह एक बार फिर आई एम गोइंग प्लेइंग दिस अमेजिंग गेम एट द सेम टाइम वन मोर ऑफ यू वन मोर लिसनर गेट्स शॉर्टलिस्टेड इन द लकी ड्रॉ एंड ऑल्सो विन्स मूवी टिकट्स एंड एन एफएनबी वाउचर
1: बिग 106.2

0: Pacha and Sharvi Yadav with Morni Bagama. This is Big 106.2. It's time to play the Big Bollywood Quiz.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: 2nd of July, aaj is the World UFO Day. Unidentified Flying Object ka divas hai aaj celebrate karne ka. All the aliens and a certain Mr. Trump is going to declassify some classified information. Iski wajah se bahut sara UFOs and aliens ka news aap dekhne wale hain all across, right? But that is for another day. Aaj Bollywood and UFOs ka kya connection hai? I'm going to play out a scene for you. Is scene ko suniye jisme ek alien giving almost like an interview. Wo bata raha hai ki jab wo apne UFO ko lekar apne planet se Earth aaya to uske saath kya hua. Isko suniye, bataiye kaun si film hai ye?
2: Karte kya ho?
3: Astronaut hain.
2: Astronaut. Yani wo jo moon pe jate hain.
3: Ek baar gaya hu moon pe. Bahut hi lul place hai.
2: अच्छा ओके तो तुम्हारा फेवरेट प्लैनेट कौन सा है?
3: हमारा अपन प्लैनेट.
2: नहीं नहीं अर्थ तो अच्छा है ही, उसके अलावा
3: हम बोला हमारा अपन प्लैनेट. जब रात हुई तब वहां ऊपर दिखेगा हमारा घर. बवाल मच गया वहां उड़न. जब पता चला कि एक तो और गोला है जहाँ हमरे जैसा लोग रहता है, हमको भेजा यहाँ रिसर्च करने. लेकिन आते ही का वेलकम हुआ.
0: रिमोट कंट्रोल से यूएफओ कौन चलाता है यार, मतलब हाँ. एंड कौन सा ऐसा एलियन है जो भोजपुरी एक्सेंट में बात करता है? यू आप समझ गए होंगे किस फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ. अगर फिल्म का नाम आपको पता है देन गिव मी अ कॉल राइट नाउ 800-1062. दैट्स माय नंबर 800-1062. सही जवाब दीजिए एंड यू कुड विन 2 ओपन मूवी टिकट्स. Bandhu 2.0 from Cocktail 2 is coming up in just a while. This is the Big Breakfast with me, Sid. Big 106.2.

0: 101.2 The Beat of Bollywood. Thinking about looking and feeling your best? At Zulekha Hospital, our aesthetic and plastic surgery specialists deliver discreet, world-class care in facial refinement, body contouring, and cosmetic enhancement using advanced techniques designed to enhance your natural features with precision and balance, with results that look natural and feel like you. Zulekha Hospital, where confidence feels natural. Call 600-52442 to book your appointment. The Big Breakfast, brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
1: Craving pizza? Here's something even better. Order for just 50 dirhams on the Papa John's UAE app and enter the Papa Cash and Rewards raffle. You could win 50,000 dirhams cash every month, plus monthly iPhones. And that's not all. Everyone wins with free pizzas and sides guaranteed. Dine in, take away, or get it delivered. Just order through the UAE Papa John's app. Download, order for 50 dirhams. Enter the raffle. Everybody wins. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
0: Listen to her every day.
2: Mugambo! Khush hua!
3: चुनाव न्यू ड्राइवर ओके, कल हम एक जगह गए जहाँ पे पार्किंग बहुत ट्रिकी थी. अब मुझे बेसिक एंगल पार्किंग और गराज पार्किंग आ गई है, पैरेलल अभी तक मैंने अटेम्प्ट नहीं करी है, बट उस जगह की पार्किंग बहुत ट्रिकी थी. तो पहले तो पार्किंग मिल नहीं रही थी, आई वाज वेरी हैप्पी कि बेइज्जती नहीं होगी मेरी फ्रेंड के सामने. फिर मिल गई, एक बंदा जो है चला गया जब हम निकल रहे थे. मैंने 20 मिनट कोशिश करी, मेरी गाड़ी वहां लगी नहीं. तो एज ए न्यू ड्राइवर आपने ये पार्किंग एंग्जाइटी फेस करी है? मतलब गाड़ी चलाना स्टिल ओके, बट पार्किंग स्पेशली न्यू पार्किंग्स गिव मी अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी.
4: So what I usually do is just find a very open space. You don't have to like find between park spaces. Try to go for the maximum space you can get, because as a new driver you can face a lot of challenges with the angles.
3: कल तो बिल्कुल open space नहीं थी, वो packed जगह थी और पीछे तीन गाड़ियाँ खड़ी थी और वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैंने उनकी property में हिस्सा मांग लिया. Oh, it was so bad. I can't tell you, my friend had to stand outside. आगे करो, पीछे करो. I said बहुत बेइज्जती होगी, यहाँ से निकलो.
0: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
5: It's 9:31 on the clock, and let's take a look sabse pehle at the capital, Abu Dhabi. Everything is very, very well behaved aaj subah se in the capital. Halka bulka Muzaffar Industrial ke aaspaas jata hua traffic aapko milne wala hai on E30, and then Mafraq Industrial E11 going towards Banias also. यूजुअल दो से तीन मिनट की देर यहाँ पर आपको मिलने वाली है. चलते हैं दुबई शारजा की ओर. E11 अनयूजुअल ट्रैफिक यू विल फाइंड जबल अली के आसपास, एंड दिस इज हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स. यहाँ पर देयर हैव बीन अ कपल ऑफ इंसिडेंसेस बीइंग रिपोर्टेड, सो बी केयरफुल. 5 से 7 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ बिताने पड़ सकते हैं आपको. देन देयर इज द जंक्शन ऑफ 311 एंड 44 JBT पर यू विल फाइंड 3 to 4 मिनट डिले. देन अलकूज इंडस्ट्रियल पर एंड अनदर पॉकेट ऑफ ट्रैफिक 44 पर गोइंग टुवर्ड्स बिजनेस वे फ्रॉम D3. देयर इज ऑल्सो D94 विच इज अ बिट कंजेस्टेड टुडे. आज जुमेरा पब्लिक बीच की तरफ जाता हुआ ट्रैफिक आपको मिलने वाला है 3 से 4 मिनट का. E11 ट्रेड सेंटर राउंड अबाउट ऑन शेख जायद रोड, एंड देन 611 एमिरेट्स रोड पर गोइंग साउथ टुवर्ड्स अल अवीर यू विल फाइंड 3-4 मिनट्स का डिले.
0: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
6: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है. दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
7: उड़ी बाबा.
0: Big 106.2, The Beat of Bollywood. Big 106.2, Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: past 9:40 on the clock. It's time for the big Bollywood quiz.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: नहीं मतलब विनर अनाउंस करने का मौका आ गया. I've got somebody on the phone line. जब उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं कहते, उसे कहते हैं धर्म संकट. धर्म, how are you doing?
2: Good morning, Sid Paji. Good morning.
0: क्या चाल है, सब ठीक ठाक?
2: All is well.
0: अभी ऐसा होता है कि you know, when you change your opinion and people say कि यार ये सिर्फ changing opinion नहीं है, तो धर्म परिवर्तन हो गया.
2: ये आपने आज मुझे इतना अच्छा दिया ना स्लोगन.
0: स्लोगन पे स्लोगन है भाई.
2: क्या बात है,
0: काफी बॉलीवुड क्या कहते हैं फिल्मी नाम तो आपका है ही, साथ में यू कैन ऐड सो मेनी यू कैन हैव सो मेनी इंस्टाग्राम अकाउंट्स यार. धर्म संकट, पता नहीं क्या क्या, बट क्या चल रहा है, हफ्ता कैसा गुजरा?
2: हफ्ता बढ़िया जा रहा है सर. आपका आशीर्वाद. रजिस्ट्रेशन सुनते जाते हैं सुबह शाम को, भी जाते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन ऑट होता है.
0: चलो बढ़िया. टुडे इज एक्चुअली द वर्ल्ड यूएफओ डे. या डू यू बिलीव इन एलियंस? डू यू बिलीव दैट वी आर अलोन इन दिस यूनिवर्स? और आपको लगता है कि नहीं कहीं पे कोई ग्रह है जहाँ पे हमारी तरह और भी ऐसे टाइम पास लोग होंगे?
2: सर मैं बिलीव करता हूँ आंखों देखी पर. जिस दिन दिख गया उस दिन बिलीव हो जाएगा पक्का. हाँ लेकिन सुना बहुत है कि यूएफओ हैं, वो आते रहते हैं हमें चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है.
0: करेक्ट. एंड एक ऐसे आए थे भाई साहब जो कि अचानक पता नहीं भोजपुरी में बात करने लगे थे, एंड उनका यूएफओ जो था वो रिमोट कंट्रोल से चलता था. लास्ट टाइम मैंने एक डायलॉग भी आपको सुनाया, आमिर खान अनुष्का शर्मा, फिल्म का नाम क्या था? वेरी सिंपल,
2: मिस्टर परफेक्शनिस्ट. द सीन वाज फ्रॉम फिल्म यू, पीके.
0: एब्सोल्युटली करेक्ट, पीके इज द करेक्ट आंसर. इस बात पे कोई धर्म संकट नहीं है कि धर्म ने जीत लिए. दो open movie tickets in the big Bollywood quiz. Thank you so much. Absolute pleasure talking to you. And enjoy the rest of your day at work.
2: Thank you so much.
0: हमारे आज के विनर हैं. रोज सुबह आई गिव यू अ चांस टू फ्लेक्स योर बॉलीवुड मसल. नॉट रियली यार, इतना आसान सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ. कुडंट गेट इजियर देन पीके. हैप्पी वर्ल्ड यूएफओ डे. फ्रॉम द फिल्म धुरंधर द रिवेंज कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल. हम प्यार करने वाले. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड. गुड मॉर्निंग.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: The Big Breakfast brought to you by Zulekha Hospital. Your health matters.
3: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
0: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
4: कुछ टाइम पहले से अनयूजुअल ट्रैफिक एट E11 शेख जायद रोड पर, एंड दिस इज एज यू क्रॉस जबल अली गोइंग टुवर्ड्स दुबई पार्क्स एंड रिसॉर्ट्स, यू विल फाइंड अ बिट ऑफ कंजेशन देयर बिकॉज़ एन इंसिडेंट इज बीइंग रिपोर्टेड ओवर देयर। सो 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लेकर चलिए अगर ये रास्ता आपके काम के रास्ते में आता है तो। देन देयर इज 44 एंड 311 का जंक्शन एट JVT इज अ बिट कंजेस्टेड दिस मॉर्निंग, 3-4 मिनट की देर यहां पर। एंड देन 44 पर द यूजुअल गोइंग टुवर्ड्स बिजनेस वे फ्रॉम D3 तो आपको ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा। द गुड न्यूज इज 66 का वो ट्रैफिक अब छट चुका है, इट इज लुकिंग मच मच बेटर गोइंग टुवर्ड्स अल जदाफ। देन देयर इज अ बिट ऑफ यूजुअल congestion at D75 and this is going towards Dubai frame. Then 311, E11, dono arteries pe heading south going towards Dubai from Sharjah, you'll find 7 to 8 minutes ka delay. And then there's still a bit of congestion at 611 heading south going towards Al Aviv.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
5: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस
6: ए मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
7: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
0: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे।

0: 35 degrees Celsius outside, lows aa jayenge 32 tak, humidity at 55% today.
1: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.
2: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
3: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ.
1: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस हे मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
3: ट्रैफिक का हाल फिलहाल, इफ यू टेकिंग E311 शेख मोहम्मद बिन जायद रोड, जा रहे हो शारजा की तरफ, सिटी सेंटर मोटिव के पास एक कार एक्सीडेंट की वजह से आपको मिलेगा कम से कम 8 मिनट का डिले। अनदर कार एक्सीडेंट रिपोर्टेड ऑन D83 रिबात स्ट्रीट, फेस्टिवल सिटी के पास क्रॉसिंग नाद अल शमा, वहां पे भी 5 से 6 मिनट का डिले। स्लो मूविंग ट्रैफिक, वेरी लाइट ट्रैफिक ऑन E44 अलखेल रोड, D3 वाले जंक्शन के पास, दिस इज क्रॉसिंग मिरकाद। उसके अलावा रेस्ट एवरीथिंग लुक्स प्रीटी मच क्लियर। दिस एनी अदर ट्रैफिक अपडेट यू कैन लेट अस नो 4305 पे। दिस इज द बिग मिक्स विद मी ज़ोहरा।
2: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Big. Woo! Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस
1: ये मामू
0: सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहे तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: मैदान सिंह के खजाने का एड्रेस जरा जोर से बोले बे।
4: Get ready for a treasure hunt like no other. Indra Kumar, Bhushan Kumar and Ashok Takeria invite you to the biggest family entertainer of the year, Dhamaal 4. Starring Ajay Devgan, Ritesh Deshmukh, Arshad Varsi and Javed Jafri. Directed by Indra Kumar. Releasing on 10th July. Distributed by Al Nisar Cinema Film. Powered by Big 106.2. Listen to her every day.
5: Mugembo, खुश हुआ।
6: चुना मैं न्यू ड्राइवर। ओके, कल हम एक जगह गए जहाँ पे पार्किंग बहुत ट्रिकी थी। अब मुझे बेसिक एंगल पार्किंग और गराज पार्किंग आ गई है, पैरेलल अभी तक मैंने अटेम्प्ट नहीं करी है, बट उस जगह की पार्किंग बहुत ट्रिकी थी। तो पहले तो पार्किंग मिल नहीं रही थी, आई वॉज वेरी हैप्पी कि बेइज्जती नहीं होगी मेरी फ्रेंड के सामने। फिर मिल गई, एक बंदा जो है चला गया जब हम निकल रहे थे। मैंने 20 मिनट कोशिश करी, मेरी गाड़ी वहाँ लगी नहीं। तो एज ए न्यू ड्राइवर आपने ये पार्किंग एंग्जाइटी फेस करी है? मतलब गाड़ी चलाना स्टिल ओके, बट पार्किंग स्पेशली न्यू पार्किंग्स गिव मी अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी।
7: So what I usually do is just find a very open space. You don't have to like find between park spaces. Try to go for the maximum space you can get, because as a new driver you can face a lot of challenges with the angles.
6: कल तो बिल्कुल open space नहीं थी, वो packed जगह थी और पीछे तीन गाड़ियाँ खड़ी थी और वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैंने उनकी property में हिस्सा मांग लिया। Oh, it was so bad. I can't tell you, my friend had to stand outside. आगे करो, पीछे करो। I said बहुत बेइज्जती होगी, यहाँ से निकलो।
2: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
8: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
9: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा on The Big Mix on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
10: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
11: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
6: इट्स 37 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड। आज टेम्परेचर काफी ज्यादा, ह्यूमिडिटी है 48% पे, प्रीटी मच अंडर कंट्रोल। कल से कंपेयर किया जाए तो हाईज इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, लोज जाएंगे आज सिर्फ 33 तक। इट इज अ ब्राइट सनी एंड हॉट डे।
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Fast Track Song of the Hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर। 106.2

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Hanji, good afternoon. This is Zohra with you on The Big Mix all the way until 2. Filhal hum baat kar rahe hain about something like it's another extraordinary, another epic, another massive creation that's coming up. Abu Dhabi mein ye ho raha hai, and it is all set to break another record because it is getting a massive new performing arts venue. Matlab massive, matlab itna massive ki imagine 2000 plus seats honge yahan pe for the performance hall. Uske alawa 3500 seats outdoor amphitheater mein expect kar sakte ho aap. 400 seats studio ka theater yahan pe hoga and 250 seat jazz venue. So you can imagine ki iski capacity kya hogi yaar. So his highness शेख खालिद बिन मोहम्मद उन्होंने विटनेस किया और अनाउंस किया इस लैंडमार्क का ओपनिंग, विच इज बेसिकली इस लैंडमार्क का ओपनिंग होने का अनाउंसमेंट है ये बेसिकली, विच इज बीइंग करंटली मेड एंड इट इज डिजाइन बाय द लेजेंडरी आर्किटेक्ट फ्रैंक गैरी. एंड इन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड वाइड आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स और यू नो लैंडमार्क्स पे काम किया है एंड ही इज गोइंग टू बी वर्किंग ऑन दिस लैंडमार्क इज वेल. इसका जो एक फर्स्ट लुक है ये रिवील हुआ है, यू कैन गो चेक इट आउट ऑन द वेब. बट उसके अलावा दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज ह्यूज वेन्यू. इसका नाम होगा दार अल फनून अबू धाबी एंड इट इज सेट टू बिकम वन ऑफ द रीजन्स लार्जेस्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स डेस्टिनेशन. सो वेरी वेरी फॉर दैट, स्पेशली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की अगर बात करो आप तो यहाँ पे आप सारा कुछ ही एक्सपेक्ट कर सकते हो. यू डोंट हैव टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस टू विटनेस दीज डिफरेंट जॉनर्स. यहाँ पे ओपेरा भी होगा, बैले भी होगा, थिएटर प्रोडक्शन होंगे, कॉन्सर्ट्स, आर्टिस्टिक रेसिडेंसीज एंड कोलेबोरेशन विद लीडिंग इंटरनेशनल परफॉर्मर्स. Everything, all of it in this one destination. You know already ki iski capacity kitni zyada massive hai. So very very excited for that, another achievement. And I think that is what this nation does, right? UAE is so so proud to be able to call it home because every day is a day that I feel ki aaj bhi kuch naya kar diya, aaj bhi kuch hatke kar diya.

0: नमस्ते।
1: पहले आप वादा कीजिए आप गुस्सा नहीं होंगे।
0: भला मैं क्यों गुस्सा होने लगा? आप बात बताइए।
1: मैं बात तो बता देती लेकिन मुझे डर है कि आपको गुस्सा आ जाएगा।
0: नहीं नहीं नहीं, आप तो खाम खा डर रही हैं। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, सब आ रहा है। गुस्सा आ जाएगा, आ रहा है। देखिए
0: ये गुस्सा नहीं है।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.
3: ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y da sentido a toda mi vida con tu querer.
4: Name samjha, name jana, jo tumne mujhse kaha hai, señor.

0: 106.2.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Missed your morning buzz? Yes or no?
2: So it's going to be Rhythm versus Nisha, okay?
3: Yes.
2: Okay, this is the song. ये आपका गाना अरे भाई सवाल तो पूछने दो या दिस इज द सॉन्ग सो वी जस्ट गेटिंग वार्म्ड अप ओके ये गाना है इस गाने से जुड़े अब मैं आपसे तीन सवाल पूछूंगा इस गाने की शूटिंग कौन सी कंट्री में हुई
3: बिग निशा इज इट लंदन
2: लंदन इज नॉट अ कंट्री
3: बिग रिदम UK
2: is a new K. UK is a country, but it is not the correct answer. Any other guesses? Might is the clue for you. Any other guesses? Might. Is country or India ka cricket mein bahut ghamasan chalta hai.
3: Australia. Big Nisha.
2: Nisha is a teacher, so Nisha has won. So I don't know what to say. Congratulations. Nisha, चलो साथ मिलकर बोलेंगे. Ready? 1, 2, 3. Nisha.
0: Energy and action. Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
4: ट्रैफिक का हाल फिलहाल E311 शेख मोहन बिन जायद रोड लाइट ट्रैफिक शुरू हो रहा है वर्का 2 से गोइंग टुवर्ड्स D93 एंड आल्सो हेडिंग टुवर्ड्स S102 शारजा रिंग रोड मोटर ट्रैफिक एटलीस्ट अबाउट 10 मिनट डिले ऑन दैट रोड अगर आप ले रहे हैं D62 नाजल हमार स्ट्रीट वहां पर एक कार एक्सीडेंट हुआ है जस्ट बिफोर D83 जंक्शन फेस्टिवल सिटी के पास विच इज कॉजिंग अबाउट 10 मिनट डिले ऑन दैट रोड व्हीकल ब्रेक डाउन एयरपोर्ट स्ट्रीट पे हुआ है D89 उसके अलावा थोड़ा सा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक E11 इतिहाद रोड हेडिंग टुवर्ड्स नाहदा 1 साथ ही साथ थोड़ा सा हैवी ट्रैफिक आपको मिल जाएगा ऊद मेहता अगर आप जा रहे हैं हैवी ट्रैफिक स्पेशली D84 जाबील स्ट्रीट पे आपको मिल जाएगा एनी अदर ट्रैफिक अपडेट यू कैन लेट अस नो 4305 पे
0: selfdrive.ae नाउ ब्रिंग्स यू द मोस्ट अफोर्डेबल मंथली कार रेंटल्स इन द UAE स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 899 दिरहम्स अ मंथ बिग 106.2 बिग

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: मीना लारी तू पर सूट रेशमी गेर चले तो भारी भीड़ लगा रही तू।
1: एक बार चल गल पूरी सौ कर दू रंग मेरा देख देख दूरी नो दर तू फिर ना बोल लगी।

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 7 degrees Celsius outside, very very hot and very very humid. Humidity filhal hai 54% pe. Highs isse zyada hopefully nahi jayenge. Lows are expected to drop to about 33 later tonight.
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ie.
1: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: 1:14 हो चुके हैं. हाँ जी, गुड आफ्टरनून. बिल्कुल सही टाइम है. ऐसी कड़क धूप में जब आप बाहर निकलते हो और सोचते हो इस धूप से छुटकारा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा और कहाँ ही मिलेगा, ये सारे जवाब मैं आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि हम आपके लिए इस समर सबसे बड़ा सरप्राइज लेके आए हैं यार. दिस समर बिग 106.2 इज गिविंग यू द अल्टीमेट स्टेकी ऑन बिग समर सरप्राइजेस. प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर स्केचर्स, टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रिक्सर सलमाय रिद रासल हेमा में. दिस इज द अल्टीमेट फैमिली स्टेकेशन जो आप प्रे कर रहे थे, विश कर रहे थे कि ये आपको मिल जाए, ये हम आपको दे रहे हैं. द स्टनिंग प्रॉपर्टी विच इज रिक्सर सलमाय रिद रासल हेमा, परफेक्ट है आपके लिए टू रिलैक्स, टू अनवाइंड, टू जस्ट यू नो कंप्लीटली गेट अवे फ्रॉम ऑल द कियोस, ऑल द मैडनेस इन योर लाइफ. आपको बस एक चाहिए, एक पॉज बटन. ये पॉज बटन यहाँ पे है, बिकॉज यहाँ पे यू कैन जस्ट चिल बाय द पूल, दिस ब्यूटिफुल पूल दैट दे हैव. बढ़िया खाना खाओ वहाँ पे, मोमेंट्स दैट यू गेट टू कैप्चर ऑन योर phones and in your brain as well, just mental memories agar aapko banane hain, this is the perfect place. Plus a chance to win daily prizes worth 500 dirhams including movie tickets and F&B vouchers as well every single day. Participate karna chahte ho to tune in karna hoga the big breakfast and the big thrill, dono par ye mauka aapko milega. BSS space apna naam type karke bhejna hai hamare WhatsApp pe, which is 0543091062. That's 0543091062. BSS space अपना नाम ये टाइप करके हमें व्हाट्सएप जल्दी से कीजिए. दिस इज योर चांस ऑफ विनिंग द अल्टीमेट फैमिली स्टेक. बिग समर सरप्राइजेस. प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर स्केचर्स, टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रिक्सर सलमाय रिद रासल खेमा, ओनली ऑन बिग 106.2.

0: यार एक बहुत ही फनी चीज मतलब मैंने इंस्टाग्राम पे देख ली एंड आई हैव टू थ्रो दिस एट यू राइट नाउ. सो आई केम अक्रॉस दिस क्लिप जहां पे उन्होंने कहा दैट दिस पर्सन वाज इंटरव्यूइंग और वाज ऑन अ पॉडकास्ट विद अ वेरी वेरी बिग बॉलीवुड सेलिब्रिटी. ठीक है, एंड उस बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ इंटरव्यू शुरू करने से पहले उन्होंने कहा कि सर एक माइक चेक कर लेते हैं, माइक टेस्ट कर लेते हैं ना. अब माइक टेस्ट में लोग क्या करते हैं, अगर आपको कहा माइक टेस्ट करने को तो हम करेंगे माइक चेक, 1 2 1 2, हेलो हेलो, कैन यू हियर मी, इज दिस ऑडिबल इनफ, एम आई लाउड इनफ, ये करते हैं ना माइक टेस्ट में. जब सेलिब्रिटी को माइक दिया माइक टेस्ट करने के लिए, उन्होंने बस माइक में किया उन्होंने बस माइक में खास दिया और गला साफ कर दिया. दैट वॉज हिज माइक टेस्ट, दैट वॉज हिज माइक चेक. आई वॉन्ट यू टू टेल मी इफ यू आर एबल टू गेस हु दिस सेलिब्रिटी इज जिनका ऑरा इतना ज्यादा प्लस प्लस प्लस प्लस में चल रहा है कि उन्होंने सिर्फ माइक में गला साफ कर दिया और वो ही इनका माइक चेक बन गया. डू यू थिंक इट इज ऋतिक रोशन, डू यू थिंक इट इज रणबीर कपूर, और डू यू थिंक दिस इज सलमान खान? डू यू थिंक ये किसके काम हो सकते हैं, मुझे बताओ. 800-1062 पे कॉल करके आई वांट टू नो हाउ वेल यू नो योर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज. 800-1062, गेट कॉलिंग.
1: Brother?

0: खिलाने पिलाने और जमीन बाहर पसारे, बोल रहे थे कि हाउस मार्क कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया के पैर का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली
1: बिग 106.2 Early in the morning, the Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zulekha Hospital and Henna Speedy Easy Hair Color.
2: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
1: Listen to her every day.
3: Mugembo! खुश हुआ।
4: प्रिया जी, मुझे एक बात बताइए कि आप कौन सी कैटेगरी में आती हैं? आपकी फोन की बैटरी यूजुअली कितने परसेंटेज पे रहती है?
5: I am from the 90 to 100%.
4: Yeah, Miss Responsible. You will never lose your keys. You are a perfectionist.
5: Super, super responsible. वो कभी कभी कर्स हो जाता है, you know?
4: अगर आप परफेक्शनिस्ट बॉस हो तो आपके एम्प्लॉइज के लिए 100% कर्स है। बट प्रिया, यू नेवर फॉरगेट योर पासवर्ड्स आल्सो, राइट?
5: नो,
4: देखा, आई लव दिस रिसर्च।
5: नो माय ऑल माय क्रेडिट कार्ड नंबर्स, माय बैंक अकाउंट नंबर्स, माय पासपोर्ट नंबर्स, ऑल दोस आल्सो आई नो बाय रोट।
4: दिस रिसर्च इज बैंग ऑन देन।
5: And then I never claim that I am good with numbers. But these numbers I know very well.
4: But then a dropping battery icon definitely gives you a major anxiety. You carry a power bank with you always.
1: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
6: Hey, jaldi hata tera khatana. Jal hata.
1: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: Quick look on the roads. E311 लेकर शारजा की तरफ जाते हुए आपको मिलेगा मर्डर सिटी सेंटर के पास स्लो मूविंग ट्रैफिक, अबाउट अ 10 मिनट डिले ऑन दैट रोड। उसके अलावा द यूजुअल ट्रैफिक D89 एंड D83 दोनों पे मिल सकता है, बम्पर टू बम्पर है बट जस्ट फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स। उसके अलावा आपको मिल जाएगा लाइट ट्रैफिक DIFC के पास ट्रेड सेंटर 1, दिस इज E11 शेख जायद रोड, वहां पे भी 7 से 8 मिनट का डिले। एनी अदर अपडेट यू कैन लेट अस नो 4305 पे।
1: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
8: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
9: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
1: ये है जोहरा on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: जब से झनकार से है दिल के तार में तब से
1: Beat 106.2 Fast Track Song of the Hour brought to you by selfdrive.ae

0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
1: 133 हो चुके हैं. हाँ जी, a very very good afternoon. You're with me, Zohra on the Big Mix. मैंने आपसे सवाल पूछा था, मुझे जानना था, how well do you know your Bollywood celebrities? And based on this that you've heard, ठीक है, मैंने एक क्लिप देखा जहाँ पे एक इंटरव्यूअर इस एक्टर से कहते हैं कि आपको प्लीज एक माइक टेस्ट करना होगा. एंड माइक टेस्ट में कुछ बोलने की जगह वो बस माइक लेकर उसमें कर देते हैं. मैंने पूछा, हु डू यू थिंक दिस एक्टर इज? इज इट रणबीर कपूर, इज इट ऋतिक रोशन और इज इट सलमान खान? मैनी डीएम्स कमिंग इन. बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, बहुत सारे लोगों ने गलत भी गेस किया है. किसी ने बट एक जवाब दिया जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैं बोलना चाहती हूं. माय डियर फ्रेंड न्यूटन मैसेज सेइंग कि ये सिर्फ एक काम कर सकती है, मतलब एक ही नाम ये काम कर सकती है, और वो है ज़ोहरा. प्लीज, आई डोंट थिंक आई विल एवर बी एट अ पॉइंट इन माई लाइफ जहां पर माइक टेस्ट के लिए मैं बस गला साफ करके निकल लूं. बट थैंक यू फॉर दैट मैसेज. द राइट आंसर इज सलमान खान. Only and only our Salman bhai can pull off this move and get away with it. क्योंकि उनका aura ही है जो मतलब खास लो, छींक लो माइक में, उतना ही काफी है. You've gotten enough from him. But moving on, this is the last hour of the show. I'll be keeping you company until 2. A very, very good afternoon. My name is Zohra.

जब तलक राइट हियर ऑन द बिग मिक्स विद मी ज़ोरा, गुड आफ्टरनून. फिलहाल 2 बजने को हैं, दैट्स माय क्यू टू टेक योर लीव. मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन आवर सोशल्स व्हिच इज 106.2 बिग एफएम फॉर ऑल डेली एंटरटेनमेंट एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जो वहां पर हम डालते हैं. साथ ही साथ मेरी आवाज, मेरा अंदाज अगर आपको पसंद आया हो, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, ज़ोरा अमीन वहां पर मेरा हैंडल. आई विल नाउ सी यू ऑन अ फ्राइडे मॉर्निंग 10 से 2 के बीच. अंटिल देन, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड टू बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: अरे को है क्या
1: काटेगी क्या
2: तो चुका है आपकी मोहब्बत का चुका है। एक मिनट। 106.2 The Beat of Bollywood.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: करती है ना मेरे से, बस लव है तो सब है।

0: 93.2 The Beat of Bollywood.
1: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
2: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जाना।
3: सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो।
0: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ नैना। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कने अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 दैट्स माय सॉन्ग बाय ई एंड।

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्ज्वल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 105.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जानो.
3: सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता
2: कल हो ना हो.
0: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है? दुनिया में यूं ही होता है, ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सबको ही बांटे हैं। दिल आखिर तू क्यों रोता है?
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: समझती क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड, द बिग जियो,
2: ऑल माय फेवरेट म्यूजिक इन वन स्पॉट,
1: वीकडेज 9 PM टू 12 AM ऑन बिग 106.2, brought to you by insurancemarket.ae. Big 106.2. That's My Song by E. And.

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun.
1: Come on, come on.
0: Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
2: Good evening. This is the Big Thrill. Thursday aate hi khushi ka thikana nahi rehta hai. I think that's adulting ke weekend to weekend zindagi jeena aur hafte bhar chakki chakki peesna. Filhal, to start with, ek family staycation aap jeet sakte hain. Very very simple. Agar abhi tak humne WhatsApp nahi kiya hai, you haven't registered, do it right away. It's time for the Big Summer Surprises. BSS apna naam WhatsApp karna hai 0543091062 par. 5 se 6 we play this fun game. It's called the 5 second rule. Aapko milte hain 5 सेकेंड. मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज, तीन चीजें आपने बतानी होती है 5 सेकेंड के अंदर. एंड साउंड्स वेरी वेरी इजी, बट इतना इजी है नहीं. खेलना है तो 800-1062 इज द नंबर टू डायल. ऑल्सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग, आज मैंने वो न्यूज पढ़ी, ऑफकोर्स न्यूज तो काफी दिन पहले आ गई थी कि यूएई में 15 साल से छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन है. बट ऑफकोर्स नाउ इट इज फुल प्रूफ कि पूरी एज वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी. चिल्ड्रन कैन नॉट बाईपास दिस रूल. बट माई क्वेश्चन इज, जब हम बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स ने बहुत सारी चीजों पर पे बैन लगा दिया था. केबल टीवी नहीं 10th और 12th के एग्जाम्स के टाइम, वीडियो गेम नहीं खेलना है, आइसक्रीम जो है वो महीने में एक बार मिलती थी. तो ऐसा कोई बैन आपको याद आ रहा है? जैसे कि आई रिमेंबर द मोमेंट आई टर्न 13, लड़कों से बात करने पर भी बैन लग गया था मुझ पे.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक, गुड इवनिंग द टाइम राइट नाउ 5:07।
2: आंखों से आंखें चार करने दो, डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो।

0: चॉइस। मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको तीन डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। What if this summer came with a surprise? A big surprise. This summer, Big 106.2 is giving you the ultimate staycay. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Win a family staycation where you can relax by the pool, enjoy the breeze and treat your family to a well-deserved break. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixo's Al Mayrid Ras Al Khaimah. Only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network.
2: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
3: A car for rent at just 899 dirhams per month. Nothing even comes close. No ownership, no commitment. Just drive. Book now on selfdrive.ae. Your car, your way.
4: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
5: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
6: 36 डिग्रीज, लो जाएगा अराउंड 33, काफी ह्यूमिड माहौल है, 54% पर ह्यूमिडिटी।
1: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, this is the Big Thrill Mansi. सबसे पहले काम की बात. If you want to enjoy a fun family staycation, it is the Big Summer Surprises. Your chance to A, Ashram shortlist hona for this amazing staycation, and B, to walk away with open movie tickets and F&B vouchers. And ये सब जीतने के लिए सिर्फ एक WhatsApp करना है, BSS अपना नाम, to 0543091062. फिलहाल हम बात कर रहे हैं about bands जो हम पे लगे थे as a kid. अब बहुत सारे बैंड्स हमारे पेरेंट्स ने हम पे बचपन पे लगाए हैं. आई थिंक हर घर में कुछ बैंड्स बड़े कॉमन होते थे, जैसे 10th और 12th में केबल काट देना, वीडियो गेम खाली समर्स में बाहर आना, बर्फ का गोला खाने पर बैन, एंड ऑफ कोर्स आफ्टर सर्टेन एज लड़के और लड़कियों के साथ बात करने का भी बैन. सो दिस इज व्हाट आई एम डिस्कसिंग. आज शाम के क्या बैन थे आप पर एज अ किड, जो आज के बच्चों को समझ भी नहीं आएगा कि हम क्या गुजर के आए हैं, क्या बिता के आए हैं, बिकॉज दे आर वरिड के यार सोशल मीडिया से बैन कर दिया. तो हमारे तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे बचपन में. स्लीप ओवर, आई रिमेंबर गलती से मम्मी के सामने जिक्र कर दो कि मैं अपनी फ्रेंड के घर रुक जाऊं. मम्मी को लगता था कि स्काई डाइव करने जा रही हूं विदाउट पैराशूट. स्ट्रिक्ट नो था, नो स्लीप ओवर. सो अगर आपको याद आ रहा है क्या बैन लगाए थे मम्मी पापा ने, मुझे बताओ. 800-1062 पे वी आर आल्सो प्लेइंग द 5 सेकंड रूल, मजेदार गेम. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज, तीन चीजें आपने बतानी होती है 5 सेकंड के अंदर. मैं बार बार बोलती हूँ साउंड्स वेरी वेरी इजी, बट ये उतना ही डिफिकल्ट है जितना बचपन में पेरेंट्स को कन्विंस करना होता था कि अगर एक घंटा टीवी एक्स्ट्रा देखेंगे तो मार्क्स कम नहीं है यार.

0: बॉलीवुड।
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलखूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: Papa John's is celebrating Disney and Pixar's Toy Story 5 with Toy Story 5 personal pizzas. Order two or more eligible items for 25 dirhams each and receive one collectible per qualifying order while stocks last. See Disney and Pixar's Toy Story 5 in cinemas now. Better ingredients, better pizza. Papa John's. Order now.
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2, brought to you by selfdrive.ae.
4: Hey, jaldi hata tera khatana, chal hata. Arey jaldi hata, chunda.
0: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
5: Heavy traffic if you are on the Sheikh Mohammed bin Zayed, if you're taking E311 Merdif to Moisnes, kind of packed traffic trailing very, very slow at the moment near Creek Harbour, Dubai Festival City, Jadaf. Satwa ke aaspaas bhi traffic milega. There's also patchy traffic, Dera safe going towards Nahada. Heavy traffic on the Hesse Street going towards JVC all the way towards Production City. Anything else you'd like to report, let me know, 800-1062 par.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
6: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
7: उही बाबा।
0: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: बस आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: फिलहाल जवानी नहीं बचपन के दिन याद कर रहे हैं, द TNC's डू अप्लाई वाली जो हमारी चाइल्डहुड थी, कौन से रिस्ट्रिक्शंस आप पे थे एज अ किड। अ लॉट ऑफ फन कॉल्स कमिंग इन, बट सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
1: द बिग थ्रिल विद मानसी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: अब एज एन अडल्ट यू आर थिंकिंग के कार रेंट करनी है, बट कार रेंटल्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, देन दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू पुट अ स्माइल ऑन योर फेस। selfdrive.ae हैज द मोस्ट अफोर्डेबल कार रेंटल इन द यूएई राइट नाउ, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 899 दिरहम्स अ मंथ। बिल्कुल सही सुना, 899 दिरहम्स अ मंथ। एट दिस प्राइस पेइंग मोर जस्ट डजंट मेक सेंस। कोई ओनरशिप नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं है, जीरो स्ट्रेस, जस्ट पिक योर कार एंड ड्राइव। लुक फॉर selfdrive.ae, डाउनलोड द ऐप नाउ, वेरी इजी टू यूज। Self drive your car, your prize, your way, and it's time for the fast track song of the hour. In fact, if you also want to tell me ke aap pe kya rules, restrictions the as a 90s kid, let me know. 801-062 par.
1: Big 106.2 fast track song of the hour brought to you by selfdrive.ae.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, I'm Mansi right here on Big 106.2, part of Fun Asia Network. Here at Big Thrill, hum khel rahe 5 second rule, and joining us is बाप का भाई का दादा का सबका बदला लेगा तेरा फैजल. हाय फैजल.
2: हाय हाय, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड. डिड यू गेट द गैंग्स ऑफ वसाईपुर रेफरेंस या फिर एम ही मैंने हवे में डायलॉग मारा?
2: ऑलवेज ऑलवेज
1: ऑलवेज. आई लव द मूवी. हां,
2: आई एम सेइंग हाउ इज माय रोल इन दैट.
1: Your role is fantastic as always. Faisal is my favorite. Filhal, Faisal, I am asking everyone because, you know, kids under 15, unpe social media ka ban lag gaya hai. But when we were growing up, humpe bhi bahut sare ban lagaye the hamare parents ne. So any restrictions that you went through when you were a child?
2: My restriction was I was not allowed to go outside evening time. Like around 7 to 8, I was not allowed to go out. Koi reason se agar chale gaye to... 10 से पहले घर पे आना है, नहीं तो फिर बाद में दरवाजा नहीं खुलेगा.
1: दरवाजा नहीं खुलेगा फिर भी अच्छा है. मैं तो इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं अपनी उम्र नहीं बताऊंगी, बट आज भी जब मैं घर जाती हूँ, अगर मैं 10 बजे के बाद घर आई तो मेरी मम्मी दरवाजा खोलती है, लेकिन उसके जो बोलती है ना वो मैं बताने लायक नहीं हूँ. तो अभी तक वो रेस्ट्रिक्शन है मुझ पे. बट आई थिंक आज की जनरेशन वो समझ ही नहीं पाएगी कि हम कितने टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई के साथ बड़े हुए हैं. फिलहाल हम खेलेंगे 5 सेकंड रूल. इट्स अ फन गेम. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरी, तीन चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर. ऑल द बेस्ट.
0: 5 सेकंड रूल.
3: ओह या.
1: थ्री थिंग्स दैट आर ग्रीन इन कलर एंड आर एडिबल. अरे अरे अरे अरे, पालक, मेथी, ब्रोकली. ओह, क्विकली टेल मी तीन बॉबी देओल की मूवीज. और है टाइम खत्म. दूसरी क्या बोली थी आपने?
2: रेस थ्री.
1: अच्छा, फटाफट खेलने वाला गेम है फैजल ये. तीन लड़कियों के नाम विद द लेटर ए.
2: मानसी.
1: ए ए. अरे मानसी तुम्हारे दिल में बस गई है. मानसी एम से है, ए से नहीं है फैजल. सो क्यूट. फिलहाल थ्री थिंग्स दैट यू एब्सोल्युटली डिसलाइक अबाउट योर कोवर्कर्स.
2: I am black. I cannot say anything. Sorry.
1: क्यों? साथ में बैठे हैं?
2: नहीं नहीं.
1: तो?
2: बोलने से समझ नहीं रहा. 5 सेकंड.
1: अच्छा, तो लंबी लिस्ट है?
2: बहुत लंबी लिस्ट.
0: 5 सेकंड रूल.
3: Oh yeah.
1: फैजल आपने गेम बहुत खराब खेला, बट दिल जीत लिया यार. जब मैंने बोला तीन लड़कियों के नाम ए से, सिर्फ मानसी. पहला लड़का है फैजल, पहले लड़के ने जो है मेरा दिल जीता इतने टाइम बाद. थैंक यू सो मच. अब मैं ब्लश करती रहूंगी यार शाम भर.
2: समर सरप्राइज दे दो.
1: ये देखो, मुझे लगा दिल से निकली है ये बात. कैसी दुनिया हो गई है. क्या कोई तारीफ, कोई रिश्ता दिल से नहीं. बस ये दो तो ये लो, ये लो तो ये दो. आई एम हर्ट फैजल. बाय. मेरा नाम पहले लिया, उसके बाद आपने TNCs जो अप्लाई करी है कि मुझे समर सरप्राइजेस दो.
2: तो ऐसी बोल रहा था मजाक में.
1: बट अगर समर सरप्राइजेस में पार्टिसिपेट करना है, सेंड अस अ व्हाट्सएप 0543091062 पे. ठीक है? ओके, थैंक यू फैजल.
2: थैंक यू.
1: ये 5 सेकंड रूल आपने खेलना है. एक ही रूल है. 800-1062 इज द नंबर टू डायल.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. This is the Big Thrill of Mansi. We're playing the 5 second rule, and also I'm asking you a question. Ke as a desi kid who grew up in the 90s, aapke gharwalon ne, aapke mummy papa ne, aap pe kaun se restrictions lagaye the? So nam, yaad hai? Growing up, mummy papa ne kaun si paabandiyan lagayi thi hum pe?
2: I had to finish my plate. So plate mein jo kuch bhi hai, whether you like it, you don't like it, you have to finish it.
1: To kya punishment milti thi agar khana plate mein liya aur finish nahi kiya to?
2: I didn't get dessert.
1: तो यार तुम लोग बड़ी मतलब टीवी वाली रिच फैमिली से, और डिजर्ट विजर्ट हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता था. कभी कभार कुछ मीठा मांगा तो मम्मी चीनी का परांठा बना देती थी. तुम बड़े फैंसी लाइफस्टाइल से बड़े हुए, आज नेवर गॉट डिजर्ट. हमें तो डिजर्ट नाम भी नहीं पता था. मम्मी कुछ मीठा खाने का मन है, हम ऐसे बच्चे थे. फिलहाल सोनम, व्हाट डू यू डू?
2: आई वर्क इन अ प्राइवेट कंपनी.
1: ओह वेरी नाइस, सो डू आई. Is this like a secret mission that you're on that you can't disclose?
2: No, I wasn't sales.
1: Oh, nice. Very, very nice. Yeah. Massive respect for people who are sales. I mean, I always say that getting money out of the world is the toughest task. For now, we'll play the 5 second rule. It's a fun game. You get 5 seconds. I'm going to give you a few categories. Three things you have to tell in 5 seconds.
0: 5 second rule.
3: Oh, yeah.
1: Alpha release hone wali hai. 3 Alia Bhatt ki movies.
2: Oh my God, Razi, student of the year.
1: Oh, time khatam ho gaya. Dear, fatafat khelna hai. 3 things that are made out of milk and sugar.
2: Paneer, kheer, basundi, khoya.
1: Khoya is not sugar, it's only milk. 3 things that you find only at a beach.
2: Sand, turtles, animals.
1: Animals? मैंने कहा ना इतना आसान नहीं है जितना ये साउंड करता है. 3 बॉलीवुड मूवीज जिनके टाइटल में दिल आता है.
2: दिल चाहता है और दिल.
1: ओके,
2: दिल है कि मम.
1: मैंने वही तो बोला, इट साउंड्स इजी बट इट इजंट. 3 रेड फ्लैग्स फॉर यू इन अ रिलेशनशिप.
2: स्प्लिटिंग द बिल, चेकिंग फोन्स एंड
1: टाइम खत्म हो गया है. डेटिंग ऐप
2: नहीं, स्टिल टॉकिंग टू एक्स.
1: स्प्लिटिंग द बिल इज अ रेड फ्लैग
2: ऑन द फर्स्ट डेट. यस.
1: सो फर्स्ट डेट का रूल क्या है? जिसने इनवाइट करा वो बिल भरे.
2: Yeah, I mean at least offer to pay. I mean I would like to split the bill, but at least offer.
1: I'm assuming you're single.
2: Yeah.
1: Mila koi aisa jo offer kar raha hai?
2: That's why I'm single.
0: 5 second rule.
1: Oh, Sonam, ye game utna hi tough hai jitna pyar dhoondna aaj ke zamane mein, but aapne bahut kharab khela. बट बड़ा मजा आया आपसे बात करके. यू हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड थैंक यू सो मच.
2: थैंक यू, बाय.
1: This is what the game is. It sounds easy, it isn't. Agar aapne try karna hai, 800-1062 is the number to dial.
0: Beat

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 6:09।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, yeah, Big Thrill of Mansi. We're playing the 5-second rule. Joining us is Kajal. And I said to Kajal, Kajal, how beautiful your name is. So she's like, you're the first one to compliment my name.
3: Right.
2: Aaj se pehle kisi ne compliment nahi diya, kitna sundar naam hai.
3: आपकी
2: आंखें सुंदर होंगी बहुत. ये देखो, लड़कों को ये सब करना नहीं आता है, ये नहीं कर पाते ऐसी तारीफ.
3: Right.
2: है ना?
3: Right. लड़कों को कुछ भी नहीं आता एक्चुअली.
2: आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो, मैं बोलूंगी तो फिर बस फोन आने शुरू हो जाएंगे कि स्टीरियोटाइप करती है, शी हेट्स मेन. आई डोंट हेट मेन, आई लव मेन, इट्स जस्ट दैट आई एम नॉट फाइंडिंग द राइट काइंड्स. फिलहाल काजल, क्या करते हो आप?
3: जॉब कर रही हूँ ट्रेवल एजेंसी में एज एन अकाउंटेंट.
2: वेरी नाइस. मजा आ रहा है?
3: चल रहा है.
2: चलते रहना चाहिए, बस गाड़ी चलते रहनी चाहिए. फिलहाल द 5-second rule, it's a fun game. You get 5 seconds. I'm gonna give you a few categories. तीन चीजें बतानी है 5 second के अंदर.
1: Oh yeah.
2: तीन ऐसी चीजें जो आप लड़कों में नोटिस करते हो.
3: लुक, मनी, एफर्ट्स.
2: अभी लड़के बोलेंगे, अभी कह रही थी लड़कों को कुछ नहीं आता, नाउ शी इज टॉकिंग अबाउट मनी.
3: या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट.
2: Why not? Each to its own. Moving on, three things that you find only at an airport.
3: Trolley bag, luggage and Whoa. Airport stuff.
2: Very nice! Teen type ke customer jo aapki agency mein call karte hain jo aapko bilkul pasand nahi hai.
3: Query karne wale, phir booking na karne wale and...
2: And... As a travel agent, तीन ऐसे झूठ जो आप कस्टमर्स को बोलते हैं.
3: हमारा प्राइस सबसे बेटर है, ये है द चीप वन, एंड यू विल नॉट गेट दिस सर्विस फ्रॉम एनीवेयर.
2: काजल, आई लव यू, यू आर सो ऑनेस्ट. तीन बॉलीवुड गाने जिनमें दिल आता है.
3: हम दिल, गाने हाँ. हम दिल दे चुके सनम, दिल तो पागल है.
2: अरे अरे अरे, टाइम खत्म हो गया. ये साइड में जो बैठे हैं, ये कौन है जो हेल्प कर रहे हैं? कौन है?
3: He's my colleague.
2: ये इतना शर्माते हुए क्यों? He's my colleague.
3: No, no, he's my colleague, yeah.
2: ये एफर्ट नहीं करता?
3: एफर्ट्स ये करते हैं.
2: लुक्स कैसी है इनकी आपके हिसाब से? अच्छी.
3: अरे अरे अरे, आप गलत जगह जा रहे हो. He's married, he has two kids.
2: हाँ ठीक है, दूरी बैठो इससे, बहुत जरूरी है फिलहाल. I have to say, Kajal, mind blowing for the first time. बहुत कमाल खेला है.
3: Yeah, thank you so much. Thank you.
2: अब अगली बार अगर आपको हॉलीडे बुक करनी है, काजल के पास जाना है, या आपको सच बताएगी, बोलना कि हमने सुना था तुमने मानसी से क्या कहा था, हमें सारी सच डिटेल्स दो. बट यू हैव अ ग्रेट इवनिंग, और ये जो कॉलीग है इससे दूर रहो थोड़ा, ठीक है? चलो बाय. ये 5 second rule आपने खेलना है तो कॉल करना 800-106-2 पर.

0: 36 डिग्रीज, लो जाएगा अराउंड 33, ह्यूमिडिटी फिलहाल 59% पर।
1: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.
2: साला पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. Yeah, Big Thrill of Nancy. We're playing the 5-second rule. Joining us is Pavan. By the way, who's a scientist? आप पूछोगे मुझे कैसे पता? मेरा कोई इनसे ले ऐसा कोई रिश्ता नहीं है. But इन्होंने WhatsApp किया है तो उनकी DP पे ये lab coat वगैरह पहन के बैठे हैं. तो I'm assuming he's a scientist. क्या experiment चल रहा है पवन आजकल?
2: आजकल tan in oil sample.
1: कुछ समझ नहीं आया ये. कुछ अच्छा बताओ, इंटरेस्टिंग कुछ मन से बना के बता दो. जिंदगी में क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो बताओ.
2: जंपिंग चलो, यहाँ घूमो वो घूमो, कस्टमर के पास जाओ.
1: लव लाइफ में क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा है?
2: हाउ आर यू?
1: आई एम गुड. हाँ, आई एम वेरी गुड. मेरी लव लाइफ तो एकदम जीरो है, नील बटे सन्नाटा. आपकी बताओ क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है? सेम टू यू. क्या मतलब सेम टू यू? मतलब आपके साथ वो हो, आपके साथ वो कह रहा है?
2: Nothing. I just came UAE 1 year before only.
1: Oh, so are you looking for a girl?
2: Yeah. Yesterday I saw your DP, you know. First time I talked with you, and then I searched 106.2. Then I got to know, my God, Mansi looks pretty.
1: तो क्या आप मुझे ये hint दे रहे हो कि मेरे जैसी लड़की आपको चाहिए? आपकी जिंदगी ऐसा एक्सपेरिमेंट होगी ना कि आप फिर बोलोगे मैं कहाँ फंस गया. फिलहाल पवन, वी विल प्ले द 5-second rule. इट्स अ फन गेम. यू गेट 5 seconds. आई एम गोना गिव यू अ फ्यू कैटेगरीज. तीन चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर.
0: 5-second rule.
3: Oh yeah.
1: तीन मूवीज अक्षय कुमार की.
2: वेलकम.
1: और भूल भुलैया. 5 सेकंड के अंदर फटाफट फटाफट, धीरे धीरे नहीं. तीन ऐसी क्वालिटीज जो आप चाहते हैं कि आपकी होने वाली बीवी में हो.
2: गुड आईज.
1: गुड आईज.
2: मनी.
1: अच्छा, एक सेकंड.
2: मनी
1: शी कैन हैंडल. आई थॉट यू वर सेइंग मनी शी हैज. इट्स ओके. अच्छा, कंट्रोल ऑन यू. वो आपका मनी ऐसे उड़ाएगी तो हैंडल कैसे होगा? मतलब अगर मेरे जैसी आ गई तो बचेगा ही नहीं कुछ. मैं दिन में कम से कम 50 बार तो शॉपिंग करती हूँ.
2: चलेगा, दौड़ेगा.
1: रुको, मुझे थोड़ा शर्माने दो. चल, तीन बॉलीवुड गाने जिनमें दिल आता है.
2: दिल तो पागल है.
1: और टाइम खत्म हो गया सनम. फटाफट खेलने वाला गेम है. अरे 5 सेकंड. फटाफट खेलने वाला गेम है. तीन चीजें जो आप लड़कियों की तारीफ में कहते हैं.
2: ओह माय गॉड, यू लुक प्रीटी, योर आईज आर नाइस,
1: एंड टाइम खत्म हो गया. ये बहुत. यू आर वेयरिंग नाइस शूज.
2: या इफ शी इज नॉट वेयरिंग आल्सो ओके, यू आर वेयरिंग नाइस शू.
1: लड़कियों को नहीं देते हैं शू वाला कॉम्प्लीमेंट. जस्ट सेइंग.
0: 5-second rule.
1: लड़कों के लिए होता है वो कॉम्प्लीमेंट. बहुत ही खराब खेला पवन आपने. बट इट वाज सो मच फन टॉकिंग टू यू. यू हैव अ ग्रेट इवनिंग. बाय पवन. थैंक यू. बाय. ये 5-second rule आपने खेलना है. एक ही रूल है कि अब हम कल खेलेंगे क्योंकि हम 5 से 6 ये गेम खेलते हैं. आज थोड़ा एक्सटेंड हो गया. 800-1062 इज द नंबर टू डायल एवरी सिंगल इवनिंग व्हेन यू वांट टू प्ले दिस गेम.
0: 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: अरे ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों री, तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है, माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

अब ये क्या ट्रेंड है, इट्स कॉल्ड द फूडी कॉल एंड इट इज वेरी वेरी सिंपल। टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम पे लोग खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि हम डेट्स पे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ फ्री खाना खाने। अब इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है कि यू स्वाइप समवन राइट, आप ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे किसी से मिलते हैं, यू आर लुकिंग फॉर लव, द पर्सन इज लुकिंग फॉर सेविंग मनी और प्रॉब्ली ट्राइंग अ न्यू रेस्टोरेंट। And this is a trend where people are openly coming out on social and saying that I just went on that date because I wanted to try that dish or I wanted to go to this aesthetic cafe and it's been a while, reservation mil nahi raha tha. So honestly, I respect the hustle and I know ke grocery prices bahut zyada badh gaye hain, kaun ghar pe khana banayega and all of that, but this is a trend that people who are genuinely looking for love should be very very aware of. It's called the foodie call, where the person you're talking to has zero interest in marriage or love, 100% interest in free ka khana. So ab socho, the last time jab aap date pe gaye थे, हैव यू फंडेड अ फूडी कॉल, और जस्ट लेट मी नो, हैव यू एवर बीन ऑन अ डेट जहां पे यू हैड नो इंटरेस्ट इन द पर्सन बट यू वांटेड टू ट्राई द रेस्टोरेंट और प्रॉब्ली द डिश, देन यू कैन सेंड मी अ डीएम। एक कन्फेशन मेरा भी है, सिर्फ एक बार लाइफ में मैंने भी ऐसा किया। आई वॉन्टेड टू गो टू दिस इटालियन रेस्टोरेंट, आई हैड नो इंटरेस्ट इन डेटिंग एनी वन देन, बट आई जस्ट सेड येस बिकॉज आई वॉन्टेड टू गो टू दैट रेस्टोरेंट। 106.2

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 7:09।

0: Car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
3: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
4: इट्स 35 डिग्रीज, लो जाएगा अराउंड 32, ह्यूमिडिटी फिलहाल 59% पर.
3: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट अलरास.me. बिग 106.2. Big.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, यह बिग थ्रिल मानसी एंड जिस घड़ी का आपको शाम 5 बजे से इंतजार था, इट्स टाइम फॉर द बिग समर सरप्राइजेस. इन फैक्ट इफ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड येट, डू दैट राइट अवे. योर चांस टू विन अ फैमिली स्टेकेशन. इन फैक्ट आज शाम आप शॉर्टलिस्ट होंगे, बट इफ यू विन द गेम देन यू आर 100% वॉकिंग अवे विद ओपन मूवी टिकट्स एंड F&B वाउचर्स. इट्स अ स्टनिंग प्रॉपर्टी, बीट द हीट इन स्टाइल. पूल के पास रिलैक्स कीजिए, अच्छा खाना खाइए. Enjoy some family time at the Rixos Almirah Din Russell Khema. But ye sab karne ke liye register karna zaruri hai. BSS, your full name to 0543091062. In the next 7 minutes, hamara randomizer do naam dhoond ke nikalega. To fatafat message kijiye and you got a chance to compete here with someone. मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी या एक मूवी का टाइटल दूंगी जो एक्सोटिक लोकेशन पे शूट हुई है, एंड आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस अराउंड द मूवी और द सॉन्ग. हूएवर गिव्स मी द मैक्सिमम राइट आंसर्स इज वॉकिंग अवे विद ओपन मूवी टिकट्स प्लस F&B वाउचर्स, एंड ऑफ कोर्स इनका नाम जाएगा ड्रॉ में फॉर द बिग समर सरप्राइजेस.
1: Participate in the Bollywood Vacay Contest and win a family staycation. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almirah Ras Al Khaimah.

0: नहीं नहीं नहीं, आप तो खाम खा डर रही हैं। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा तो आ रहा है, गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा आ रहा है। देखिए,
0: ये गुस्सा नहीं है।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, I'm Mansi. This is The Big Thrill. And of course, yahan pe aapke paas bhi chance hota hai every single evening A to win open movie tickets and F&B vouchers. Plus, to get into this draw for this stunning family staycation. It is the big summer surprises. If aapne abhi tak message nahi, in fact, WhatsApp hi karna hai. BSS, apna naam 0543091062 pe, just like Ansi and Bhavin. Good evening.
2: Hello.
3: Hi, good evening, Mansi. How are you?
1: Good evening. Good
2: Hi, Mansi.
1: Ansi Mansi. Hamare naam bade similar hai. Ansi Mansi.
2: Thoda rhyming to hai.
1: I know. So, Bhavin, Ansi, kaisa raha din? Ansi, kya kiya aaj special?
2: Special कुछ नहीं, regular, went to work, came back and then was just relaxing.
1: अरे कल Friday है, Friday!
2: I know. Weekend, just, yeah, weekend का थोड़ा एक good luck तो होना चाहिए, hoping.
1: Depend करता है कि भाविन कितना खराब खेलते हैं.
2: Actually, I have no clue कि मुझे क्या करना है, man. This is very first time. I sent a message.
1: I'm going to explain and tell you the rules, but you will compete with Mr. Bhavin. Can I say hello to him? Hi, Bhavin.
2: Yeah.
3: Yes, hi, Mansi.
1: Okay, how was your day, Bhavin? Good?
3: It's been good.
1: बड़ी अच्छी है यार, Bhavin आपकी.
3: जी?
1: DP बहुत अच्छी है, मैं कह रही हूँ.
3: Okay.
1: स्टूडियो ऑडियो में खिंचाई थी फोटो?
3: हाँ जी.
1: अच्छा, मुझे ऐसे एकदम AI generated लग रही है, बड़े हैंडसम लग रहे हो.
3: Thank you very much.
1: You're most welcome. चलो जी, हम बातें बाद में करेंगे, पहले आपको काम की बात बताते हैं. So both of you here are competing and you're competing for this stunning staycation. तो जो भी जीतेगा उसका नाम ड्रॉ में जाएगा and साथ में you'll get open movie tickets and F&B vouchers. So we're talking about a staycation. Here I'm gonna play a song and then I'll be asking you questions around that song. Of course, वो गाना एक exotic foreign location में shoot किया हुआ होगा. But answer देने के लिए आप बोलेंगे Big Ansi, Big Bhavin and I will ask you to answer. अगर आपने फटाफट answer दे दिया, I'll not consider it. Big Ansi, Big Bhavin बोलना जरूरी है, ठीक है?
3: Done.
1: Ansi, right. Got it?
2: Got it.
1: All the very best. It's time for the big summer surprises.
0: Participate in the Bollywood Vacay Contest and win a family staycation. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Al Mayrid Ras Al Khaimah.
1: Okay, so your song this evening is...
4: My Dil Go Zoom.
1: Batae dono ko ye gana?
3: Yes.
1: Okay.
2: Big
1: नहीं नहीं ये अभी कोई क्वेश्चन शुरू ही नहीं हुआ है, कह रही है बिग एंसी, ये अलग रफ्तार पकड़ी हुई है. चलो गाना सुन लिया है ना, बोथ ऑफ यू हर्ड द सॉन्ग? ऑलराइट, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हिच कंट्री हैज दिस सॉन्ग बीन शॉट? किस कंट्री में? एंसी एंसी यस,
2: ऑस्ट्रेलिया.
1: एब्सोल्युटली करेक्ट. 1 point टू एंसी. क्वेश्चन नंबर टू, प्रिटी जिंटा का कैरेक्टर इस मूवी में किस प्रोफेशन में होता है?
3: बिग भाविन.
1: यस भाविन.
3: शी इज अ रेडियो प्रेजेंटर.
1: एब्सोल्युटली करेक्ट. 1 all हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 3, सैफ अली खान का कैरेक्टर इस मूवी में क्या करता है?
3: बिग भाविन.
1: हाँ भाविन.
3: शेफ
1: के
2: साथ में बोला था
1: उनका कुछ सेकंड पहले था. एंसी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना यहाँ. कंग्रेचुलेशंस भाविन, आप होते हैं शॉर्टलिस्ट फॉर दिस अमेजिंग स्टेकेशन. प्लस यू वॉकिंग अवे विद कपल मूवी टिकट्स एंड F&B वाउचर्स. एंसी, यू कैन स्टिल ट्राई, यू आर वेरी गुड एट इट, बट जस्ट वो कुछ सेकंड का फासला था. बट कीप मैसेजिंग, वी स्टिल हैव द स्टेकेशन वेटिंग.
3: आई थिंक वी बोथ आर लाइक मूवी बफ्स.
1: शी इज नॉट वेरी हैप्पी विद यू, सो वो नहीं आपके साथ एंगेज करेगी. आप मुझसे बात करो. शी इज लाइक, हां मेरी टिकट ले गया. चलो, हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड थैंक यू सो मच गाइस.
2: ऑलराइट, थैंक यू मंसी. थैंक यू बाबी. बाय-बाय.
0: पार्टिसिपेट इन द बॉलीवुड वेकेय कॉन्टेस्ट एंड विन अ फैमिली स्टेकेशन. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Al Mayrid Ras Al Khaimah. Big 106.2. Fast Track Song of the Hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हाँ जी, यह है बिग थ्रिल मानसी और आशा। हम बात कर रहे थे अबाउट रिस्ट्रिक्शंस ऑन 90s किड्स, दैट्स यू एंड आई, जो हमारे पेरेंट्स ने हम पे लगाए थे। बट वी नो अ व्हाइल अगो ये अनाउंसमेंट हुई थी कि यूएई में किड्स अंडर 15 कैन नॉट यूज सोशल मीडिया, दे आर बैन फ्रॉम यूजिंग सोशल्स। एंड नाउ पेरेंट्स आर वंडरिंग कि यार बच्चे हैं, बहुत स्मार्ट हैं, अगर इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दी तो यूएई ऑफिशियल्स ने कहा है देयर इज ऑलमोस्ट नो वे किड्स अंडर 15 कुड बाईपास द सोशल मीडिया बैन। Strong verifications and VPN blockers hain. The UAE actually became the first Arab country to implement a social media ban for kids under 15. Officials ne kaha hai ke sare loopholes they have dealt with it. Entering a false date of birth won't work in platforms pe kyunki ab wo strict age verification systems use karenge, including your government IDs and AI models to estimate users' age. For kids under 15 who work as influencers or content creators, child cannot own or operate a personal social media account, but a parent or a local guardian may film the child, produce the content and manage the account under their name. So these are the updates that I have. I'm sure a lot of kids are not happy, but parents are very, very happy because there's so much kids are exposed to on social. Sometimes when I look at my algorithm and I feel like nahi yaar ye kahan se mere paas aa gaya hai, to bachcho pe to koi restriction laga hi nahi tha jab wo social media use karte the, every single kid was on their phones. To ab I think काफ़ी चीज़ें जो है बेटर हो जाएंगी, एंड व्हेन दे विल स्टे अवे फ्रॉम फोन्स, मिलेनियल पेरेंट्स कैन इंट्रोड्यूस किड्स टू 90s के टाइम हम क्या किया करते थे, मतलब गेम्स खेला करते थे, गाने गाया करते थे, पेंटिंग किया करते थे, दीवारें खराब किया करते थे, बट वी वर सो क्रिएटिव, वी वर नॉट ऑन अ फोन। सो आई थिंक दिस इज अ ब्यूटिफुल टाइम टू इंट्रोड्यूस योर चिल्ड्रन टू थिंग्स दैट यू ग्रू अप डूइंग।
2: अरे ये यहाँ क्या कर रही है, मेरा मेकअप लगा रही है, क्यों ही? तेरे बाप का माल है।
3: ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता।
0: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
4: Ready, throw! Papa John's is celebrating Disney and Pixar's Toy Story 5 with Toy Story 5 personal pizzas. Order two or more eligible items for 25 dirhams each and receive one collectible per qualifying order while stocks last. See Disney and Pixar's Toy Story 5 in cinemas now. Better ingredients, better pizza. Papa John's. Order now.
5: A car for rent at just 899 dirhams per month. Nothing even comes close. No ownership, no commitment. Just drive. Book now on selfdrive.ae. Your car, your way.
0: What if this summer came with a surprise? A big surprise. This summer, Big 106.2 is giving you the ultimate staycay. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Win a family staycation where you can relax by the pool, enjoy the breeze and treat your family to a well-deserved break. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos, Al Mayrid, Ras Al Khaimah. Only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network. Big 106.2. That's My Song by E. And.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: गुड इवनिंग, वेलकम टू द लास्ट ऑफ द शो. एंड मैंने कल आपसे कहा था ना कि इंडिया में अगर आपने कोई बिजनेस करना है तो खाने का बिजनेस करो. पीपल एंजॉय एनी काइंड ऑफ फूड. कल मैंने नीम के परांठों की बात करी थी जो हेल्दी कहा जा रहा है. लोग कह रहे हैं कि हम तो नीम का पराठा खा रहे हैं, इट्स हेल्दी, इट्स मेड विद आधा किलो घी. एंड नाउ देयर इज अनदर कॉन्ट्रोवर्शियल फूड ट्रेंड दैट्स ट्रेंडिंग इन इंडिया एंड दैट इज द मैंगो बटर पाव. अब मैंगो बटर पाव क्या है, क्या आप ये ट्राई करेंगे? क्योंकि इंडिया में तो काफी लोग इसे ट्राई कर रहे हैं, रेकमेंड भी कर रहे हैं सोशल्स में. सारी डिटेल्स देती हूँ फिलहाल. किक स्टार्टिंग दिस आर विद

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हें मेरे सिवा कोई हो, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: 6.2. The beat of Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parks dealer in the Middle East.
3: 33 लो जाएगा अराउंड 32 फिलहाल ह्यूमिडिटी आज काफी बेटर इट्स ऑन 58% स्टिल
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, यह है Big Thrill with Mansi. A while ago I was talking about कि अब जब social media 15 साल से छोटे बच्चों के लिए ban है, it's so good to introduce them to things that we used to do as kids. And I think हमारे लिए भी बहुत important है as adults. जो 24/7 सिर्फ और सिर्फ अपने फोन में घुसे रहते हैं कि कुछ घंटे फोन को साइड में रखो एंड जस्ट एंजॉय सम ग्रेट टाइम विद योर फैमिली विद योर फ्रेंड्स एंड रीलिव योर चाइल्डहुड. एंड इफ यू वांट टू डू दैट, अनप्लग, प्ले एंड कनेक्ट एट अनवाइंड कैफे. यूए का फर्स्ट बोर्ड गेम कैफे है विद 1000+ गेम्स ऑल अंडर वन रूफ विद सम ग्रेट फूड, पिज्जास, बर्गर, शेक्स. द कॉफी इज अमेजिंग. इट्स अ परफेक्ट स्पॉट फॉर फैमिली टाइम, कैचिंग अप विद फ्रेंड्स, बर्थडे पार्टीज, गेट टुगेदर्स के लिए. In fact, you have to try Unwind's Game Masters and that will help you pick a game and get you playing in just minutes. They've got epic murder mystery dinners, trading card tournaments, party packages bhi available hain. Every single time you go there, there's something exciting happening at Unwind Cafe. So over the weekend, just go to Unwind Cafe and you'll thank me later. Sari information aapko milegi unwinddubai.com mein. Filhal yahan pe milega Varun Dhawan ka version.

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, ये है Big Thrill with Nancy and you know, if you know me for a while, आपको पता है कि मेरा algorithm लोगों के सामने दिखाने लायक नहीं है. मतलब उसमें भिंडी और टमाटर की शादियां हो रही हैं, आलू जो है वो मटर के साथ चीट कर रहा है. बट देयर सर्टेन थिंग्स जो कभी कभार मेरे एल्गोरिथम में आती हैं एंड आई मेक श्योर दैट आई रीपोस्ट इट बिकॉज मैं खुद भी वो सुनना चाहती हूँ एंड क्या पता कोई देखे एंड इज गोइंग थ्रू समथिंग उनके भी काम आए. तो एक बड़ी अच्छी रील आज मैंने रीपोस्ट करी है दैट से इसके जिंदगी में आपको 10 में से अगर 9 चीज़ें मिल जाती हैं तो आप उन 9 चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं हो. हम सिर्फ एक ही चीज़ जो नहीं मिली है उसी की शिकायत करते रहते हैं कि यार ये नहीं मिला, ये नहीं मिला. अगर हम उन 9 चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो जाएं, शुक्र करने लगें कि यार ये 9 चीज़ें हमारी हैं, तो वो एक चीज़ की शिकायत कहाँ चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा. एंड आई थिंक दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ. द मोमेंट यू स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल यू स्टार्ट रिसीविंग मोर दैन यू एक्सपेक्ट इन लाइफ एंड इट इज़ वेरी वेरी हार्ड टू बी ग्रेटफुल एवरी सिंगल डे. दिस इज समथिंग दैट आई ट्राई एंड आई ट्रूली बिलीव इन. मैंने आई थिंक बहुत मेहनत करी है to realize और understand this fact के जो नहीं मिला है अगर होगा तो वो अपने आप आ जाएगा, लेकिन जो मिला है उसके लिए आई हैव टू बी वेरी वेरी ग्रेटफुल. एंड ऑल्सो सम क्रेडिट गोज टू दिलजीत दोसांझ. ही साउंड्स वेरी वेरी फनी, ही इज हिलेरियस ऑन इंस्टाग्राम, बट अगर आप इनका पूरा लाइव देखोगे ना, इवेंट राइट लाइव आई थिंक येस्टरडे ऑल्सो, ये बातों बातों में इतनी कमाल बातें कर जाते हैं एंड आई थिंक ही इज माई स्पिरिट एनिमल. ही इज सो ग्रेटफुल फॉर एवरी सिंगल थिंग दैट ही हैज एंड आई थिंक दैट इज वाई द यूनिवर्स कीप ब्लेसिंग हिम विद मोर. तो ये एक ऐसी चीज है जो हमें दिलजीत से सीखनी चाहिए एंड साथ में उनके गाने भी सुनने चाहिए. Coming up next in just a bit, right here on Big 106.2, The Beat of Bollywood.

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. सम नाइट्स नीड नो वर्ड्स, जस्ट द राइट वाइब. सिंक इनटू द बिग चिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: प्रियंका चोपड़ा

0: Thank you. Thank you. I would like to introduce my friend and a great musician, Ashwin, over here. Ashwin खुद बहुत अच्छे कंपोजर हैं. इन्होंने एक मराठी फिल्म का म्यूज़िक किया है, मैंने सुना है, और डॉक्टर एन राजम के शागिर्द हैं. और अगेन दोबारा मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने अश्विन. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. थैंक यू.
1: द बिग चिल, वेयर एवरी सॉन्ग फील्स लाइक अ डीप ब्रेथ आफ्टर अ लॉन्ग डे. ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द नाइट शिफ्ट ऑल योर फेवरेट म्यूजिक बिग 106.2